राग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेख आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कुमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी और पूरे प्रगट कर दीने राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरि सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव शेख खट बोले मुख आगर

कारम है जिन सीधा मार्ग दिखाया। हमरे प्राण गोपाल गोविंद ईगा ऊहा सर्व थोग की जिसे हमारी चिंद रहाओ। जाके सिमरन तरब निधाना मान महत पद पूरी नाम लैद कोड़ अगनस भक्त बाचे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवै एक निधाना पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी सिमरत पार पराना शीतल सांत महा सुख पाया। संत संग रहे ओला हर तन संचन हर नाम पूजन त्यो नानक कीनो चोला तना

चंदन लेप होर देखो सो गर्द पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचि आवत विखेठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी ए जुग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ ताज बद रहे जीत जन्म जन्म के किल विग दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुते निकसियो नानक एक प्रीत तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे क्यों विश्राम निध पाई।

पातत पामन गोसाई, कोर सूख आनंद राज पाए, मुक्ते निमुख बुलाई, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभु के मन पाई, नाम जपत तृष्णा सा बुझी है, नानक तृप्त अघाई, तन्हा श्री महला पंजवां, जिन कीने वसे अपने त्रैगुण, पावन चतुर संसारा, जग स्नान ताप थान खंडे, क्या यो जंत विचारा, प्रभु की ओढ़ गई तो छूटो, साध प्रसाद हर हर हर गाए, विखे ब्याल तब हुटो, अरहाओ, न सुनिए न मुक्ते बकिए, न मोहे ओ डीठी, ऐसी ठगौरी पाए पुलावे, मन सबके लागे मीठी, माए बाप पूत हित प्राता, उन कर कर मेल्यो दुआ, किसी वाद काड किसी पै, सगले लर लर मुआ, हों बलेगारी सतगुरे अपने, जिन यो चलत दिखाया, गूजी पाए जले संसारा, भगतना व्यापे माया, संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन

पंडो अन कबीरी समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम की सजन सुहेले, रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले। तनासरी महला पंजवां, पूजा वर्त तिलक इस नाना,

दुतिया पाओ निवार, बंधन काट लियो अपने कार, कभू न आवे हार, तेरी शरण पया हो जीवा, तू समरथ पुरख मेहरबान, आठ पहर प्रभु को आराधी, नानक

पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल विद काम न आवे हर हर नाम ते आया ताते मोय धारी ओड़ गोपाल शरण परयो पूर्ण परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल रहाव सुर्ग मृत पयाल भू मंडल सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल तारन हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना।

पर मंगना देखो पसार नयन सुनो साधु के बैन प्राण पद चित राख सगल है मरना रहाओ चंदन चो अरस पोग करत अनेक बिखिया विकार दिख सगल है फीके एक है गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन तान तन अपन थाप्यो हार जप न निमुख जाप्यो अर्थ द्रव देख कछ संग ना ही चलना या कोरे कर्म पला तिन ओढ़ गई संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम धान मिट्यो है अवमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे कल कलेश लो मोह मा पौजल तारे रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे साध संग जपन संग मन निधान तारे चरण कमल नमस्कार पुन गोबिंद बिचारे साजना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाव सास सास माले हे लोग परलोक संग सगाई जद कदम होए रखवाले गुर का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाए ना साके जाले रहाओ निर्तन कौ तन अंदले कौ टेक मार दूध जैसे बाले सागर मैं भोज पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनासरी महला पंजवा पय कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय संचाई नाम निध रिध सिद्ध हर लागर ही जन पाई संतन को आनंद सगल ही जाई गृह बाहर ठाकुर भगतन का हराबर या सर्वठाई रखाओ ताको कोई ना पहुंचे नखारा जाके अंग कुसवाई जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम त्याई तनासरी महला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ पूमवंत अभमानी राजा जाने सगल राज हमारा त्यो हर जन टेक स्वामी जे को अपने ओट समारे जैसा बित तैसा होए वर्त अपना बल नहीं हारे रहाओ आन त्याग पै इक आसर शरण शरण कर आए संत अनुग्रह पै बन निर्मल नानक हर गुण गाए तनासरी महला पंजवा जाको हारंग लागो इस जुग में तो कई तगै सूरा आत्म जिने सगल वसता के जाका सदगुर पूरा ठाकुर गाई गए आत्म रंग।

दुख भंजन तासु मना लगाना। जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नावा तेजोगी को जुगतना जानो। लोभ मोह माया ममता फोन जे कड़माए पछानो। अरहाव पर निंदा उस्त तन जाके कंचन लो समानो। हरग सोगते रहे अतीता जोगी ताए बखानो। चंचल मान दहत को तावत अचल जाए ठहरानो। ओ नानक ए बिद को जो नर मुक्त ताए तुम मानो। तनासरी महला नामा आप मैं कौन उपाव करो। जेवद मन को संसार चूके।

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा हे साचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गद संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय ए बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विख लादे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई, प्रभु सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी। नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी, फिर कर सोहे नार।

दुकृत सुकृत थारो करमरी अरहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरश्री स्नान रे उलझन मध्य मिले ओ सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीट सरी।

जाती कायो तूप दीप नहीं बेद कायो पूजो पाती काया बो खंड खोजते नविंद पाई ना कश आए बो ना

अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी पिन गाक मीका काखा। रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिका नोन लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। हरहाओ मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमु गावारी माया पोयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तो वड़ अगवड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा हम बार कशु ना जाने गत मित तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सयाना। मेरा मन आलसिया उगुलाना। हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट।

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुनकर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। कर कीर्त जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जगजीत जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम, जैत सरी महला चौथा। आपे जोगी जुत जुगाहा।

दूख आराधन दूख आराधन बिसरे ना काहू बेरा। नाम जगत कोड़ सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा। थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा। संत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग। तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़े हो त्याग। रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग। तेरे सागर पावक को जो संत फेटे वड भाग। जन नानक सर्व सो पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान धरा। त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव मया करा। रहाओ ताल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा। आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा। नाव रूप पयो सत संग पंध पार परा। आप्यो पियो गातियो परमा को नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जा को पय गोविंद सहाई। सुख सहज आनंद सगल स्यों वा को व्याद न काई। रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई। एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई। तिनके संग नानक निस्तरीय जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप। अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधारे मैं दीप। रखाओ सबल दर्शन तुमरा प्राप्रीतम चरण कमल आनूप।

सदगुर प्रसाद पूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेहे ते आप बंधायो रहाओ समझना परी दिखे रस रचयो जिस हर को बिसरायो पंग स्वामी सो जान्यो नाहिन पर खोजन को तायो रतन राम कट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन बेन बिरथा जन्म गवायो जैत सरी महला नावा हारजू राख लियो पत मेरी जम को त्रास पयो और अंतर शरण गही कृपा न तेरी अरहाओ महापतत मुग्ध लोभी फोन करत पाप अभारा पय मरबे को विसरत नाहन ते चिंता तन जारा कियो पाप मुद के कारण तेज को उठताया पढ़ी भीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया नाहिन गुण नाहिन का जप तप कौन कर्म अब कीजे नानक हार पर शरणागत अपहे दान प्रव दीजे जयत श्री

प्रभु छूटन लागे नरक समझिए हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजिए तलोक नच रासुख मिष्टंग नच पुगरस मिष्टंग नच मिष्टंग सुख माया मिष्टंग सा संग हर नानक दह मिष्टंग प्रभ दर्शन लगड़ा सो नेहो मन मजाहू रत्या विदड़ो सा थोक नानक मिठा सो तणी पौड़ी हर बिन कछु न लग गई भगतन को मीठा आन स्वासा फीकया कर निर्नौ डीठा अज्ञान परम दुख कटया पुर पए बसीठा चरण कम मन बेदया जो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु फिर से सब झूठा त्रोक तिगत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण विधंच पुरंक नादंग हल बंधन कुसुम बासन चरण कमल रचंत संत नानक आन नारुचते मुख डिखाऊ पलक छड आन डेऊ चित जीवन संगम तेतनी हर

नाद को रंग के बेदया सन्मुख उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलंग सास सास आराधन नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतड़ा मन मजावे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभावे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कब हो चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरी है कोई पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामंग सर्वणंग सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सद बलिहारंग जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच से पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रामत्था हर्ज लिखे बेअंत सोह है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था संता संग उधार अगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद करणंग आ रमणंग संजोग पूर्ण है गोपाल दस पेटंग सबल नांग सो मुहूर्त कीव न सक्का पाए सुख मिति हु बारे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई तो मूर्त परा संयोग है जित मिले गुसाई आड़ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड़े पाग सत्संग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है तरण सूर भगवान है जे पंत नानक हर हर हरे छड़ो हबे आप लगड़ो चरणा पास नटड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदिया पौड़ी मेल लेहो दयाल तय पय द्वारिया रख ले वो दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत विशल तेरा बिरद हार पत उधारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मोह सारिया कर गए लेहो दयाल सागर संसारिया श्लोक संत उदरण दयालंग आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संसंगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल तीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओर उदरे सगल जान सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवे मूल संत्या नाम तान संत जनासो संग पाइये वड़े पुन आड़ पैर हर चाहे हार जस निरसुन श्लोक दया करणंग दुखरणंग उच्चरणंग नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिवत न माया पाए बलंदड़ी बुल गई रखंदड़ो

कर्म जपे ही राम नाम निर्मल हैरी तरहाव प्राण आधार जीवन तन मोर देखन को दर्शन प्रभ नीत पाठ काट तो सत्संग मोर मन अपने को मैं हर सगा कीत संत प्रसाद पाए मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवां प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमखी रहते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खो वो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत तारो प्रमान आड़ परसना गुण गावे जद पूर अगावे समरथ कान तेरी शरण जीन के दाते

जप मन राम नाम निस्तार, कोट कोटंतर के पाप सब खोवे। हर भवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निरभउ निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस्त कछु नजर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो साओ सचा बणजारा, पैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्ध लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा हर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर। इस जन कौ करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाएगे हर जप। नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा। जप माना

सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कोल जन्म के दुख गवायो अरहाओ जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दिवायो सर्व सुख हर नाम वडाई।

अनगुरु साबास है हर देश स्नेहा ओ वेख वे गुरु विकसया गौर सदगुर देखा गोरसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जेन सुन सिखा गुरमनिया तिना तुक सब जावी हर का मार्ग आखिए तो किदबद जाइए हर घर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आरा दया सेसा वरदाने हो सतगुर को सदवारिया गुर भजन समाने तू ठाकुर तू साहिब तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी।

चेतना है तो चेतल है, निर्दिनमय प्राणी, छिन छिन औद विहात है, फूटे कर्जो पानी, हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लाग कह, न मरन पछाना, अजू काज बिगड़े हो नहीं।

अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लय मेरो अरहाव, संपत रतन राश्यो आत्मो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो, जान बूझ के बावरे ते काज बिगारयो, पाप करत सुगत्यो नहीं, न गर्भ निवारयो, जे बिदगुर उपदेसया

फल पाया, सह के अमृत बोला, नानक कहे सहेली हो सौखरा प्यारा, हम सह के दासियां साचा खसम हमारा, सूही महला पहला, जिन को पांडे पाओ तिना सवार सी, दुखी करे पसाओ दुख विसार सी, सहसा मूले नाहे तर पर तार सी, तिना मिलिया गुर आए।

कामना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही मोहल्ला पहला कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वरज रहाई है निजर चरे सह तुन लागे करगी परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजों सिंगी वाजे तौ निरभौ पल पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तौ

ढूंढ ढूंढाई, सत्संग तुमिर हरस पाई, तुर मस्तक लेह लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई। सूफी महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर का नाम सुमाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ। हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मानमुख मुग्ध नर को रा होए, जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नजर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सूफी महला चौथा, जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सह सुमाए, हर रजन चा खोजे पाई, तौ कत अंध साध लोभाई, हरहाओ गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे। सूफी महला चौथा, तार छेवा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद नी जाहर जपतया, उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत, किसन उतरिया कार्य से जाए, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब ले जाए, अरहाओ अरविदास चुमार उस्तद करे, हर कीर्त निमख एक गाए, पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोभ शीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका, मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नाग तिन को अनदिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूफी महला चौथा, तिन अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिन की वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा, अरहाओ तोर भगत जिना कौ बख्सया, हर अमृत पद पंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोकारा, से भगत से सेवका, जिन्ना घर नाम प्यारा, इनकी सेवा ते घर पाई है, सिर निंदक कह पवे शारा, जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद विखीली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूही महला चौथा, जिथे हर आरा दिए, तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसे, होरत बिद लया न जाई, हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई, हरहाओ सह संगति संघ हर तन खटिए, होर ते होर तो पाए, हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वा के, हर तन लया न जाई, हर तन रतन जवे हर माणक, हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की, भगतां को मिली वडियाई, हर तन निरपौ सदा सदा, अस्तिर है साचा।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सृट सब साजी कोई सेवा करो जे किश कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगध नीचाण जन नानक कौहर बख्स लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सांक

काम को ऊड़ खलोया, नाम की बेला पै पैसोया, अवसर अपना बुझे ना ए आना, माया मोर अंग लपटाना, अरहाओ लोभ लहर को बिरस फूल बैठा, साजना का दर्शना डीठा, कहू ना समझे अज्ञान गवारा, बहोर बहोर लपटे जंजारा, अरहाओ दिखे नाद कर्ण सुन पीना, हार ज सुनत आसमान कीना, दिट नाही रे पेघत अंधे, तोड़ जाए झूठे सब तंदे, अरहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करीजे, तार कृपा मुझे साथ संग दीजे, तौ कुछ पाइये जो हो ये रेना, जिसे बुझाए इस नाम

साध संग जन्म मरण निवारी अमृत कथा सुन करण आधारी काम क्रोध लोभ मोह तुजारी दृढ़ नाम दान इसनान सोचारी कहो नानक इहो तत बिचारी राम नाम जप पार उतारी सूही महला पंजवां लोभ मोहे मगन अपराधी करण हार की सेवना साधी पातत पावन प्रभ नाम तुम्हारे राख लेहो मोहे निर्गुनियारे रघाओ तू दाता प्रवंत रजामी काची दे मान अभमानी स्वाद बाद ईर्ख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन।

लोभ मोए बादा मां गर्त मैं निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय दूबत पाहन प्रभ मेरे लीजे सूही महला पंजवा जीवित मरे बुझे प्रभ सोए तिस जान कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिये मिल साधु हर नाम उच्चरिये रखाओ एक बिना दूजा नहीं जाने कड़ कड़ अंतर पार ब्रह्म पछान जो किस करे तोई फल माने आद अंत की कीमत जाने कहो नानक तिस जन बलिहारी जा के हृदय वसे मुरारी तू ही महला पंजवा गुर परमेसर करने हार सगल

न जाए। सर्व निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोल आया तेरा। सूही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओर सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाओ, प्राप अवनाशी रैण दिन गाओ, जीवत मर्त निचल पावे थाओ, सो साओ सेव जिद तोट न आवे, खात खर्चत सुख अनद विहावे, जग जीवन पुरख साध संग पाया।

तित तित लगना जा तू देह तेरा नाव जपना रहाओ हर के दास हर से तीराते राम रसायन अन दिन माते बहा पगर प्रवे आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधर स्वामी प्रभ कृपा तारे नानक दास हर शरण द्वारे सूही महला पंजवा संत प्रसाद निचल कर पाया।

प्रेम शोहा करत कसाई, निर्दय जंत तिस दया न पाई, अनक जन्म बीतियन फरमाई, तर वास न देवे दुत रमाई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण सरण नानक गद पाई, अराग सूही

लायन हर्षो लयन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से पीराते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ठोवा हर जन के पीसण पीस कमावा नानक की प्रापास बेनंती तेरे जाना देखण पावा सूही महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करणे हारा चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बरहारा मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लहिए रहाओ मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सदगुर दीन दयाला कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक कहो प्रापए कृपाला सदगुर पूरा पाया तू ही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरह सो मर जाए दयाल होवे जिस ऊपर करते सो तुद सदा थे आए मेरे साहेब तू मैं मान ने मानी अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी अरहाओ चरण

सेवक को पौ किश नाही, जम नहीं आवे नेरे। रहाओ जो तेरे रंग रते स्वामी, इनका जन्म मरण दुख न स, तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा। नाम ध्यान सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्टले सद है। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कलरा की मेरी। सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रखनहारे, जित तू लावे तित हम लागे, क्या ए जंत विचारे। मेरे राम जी तू प्रवेंतर जामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी। अरहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है, आप त्या होइए सब रेणा, जीवत्यां इउ मरिए। सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जे दया करे प्रवे आपे। दीन दयाल किरपाल प्रभु स्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साधर वाला। राग सूही अष्टपदियां, महला पहला कर पहला, एक ओंकार। सदगुर प्रसाद सब अवगुण, मैं गुण नहीं कोई, क्यों

वाला सेवीए सच्चे स्यों चित लाए जी और हाव चारे कुंडा जे पवे बिन भागा तन नाहे जियो अवगण मुठी जे फिर बदक थाए ना पाहे जियो गुर राखे से उबरे सबदर ते मन माहे जियो चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो तेन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल ना बूझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चित न आवई

दे चाखी तृष्णा अग्न बुझाए, गुर के शब्द राता सहजे माता सहजे रहा सुमाए। हर का नाम सत कर जाने, गुर के पाए प्यारे, सच्ची वडियाई गुर ते पाई, सच्चे नाय प्यारे। एक को सच्चा सब में वर्त, विरला को विचारे, आपे मेल रहे ताबक से सच्ची भगत सवारे। सब वो सच सच सच वर्त, गुरमुख को ई जाने, जमण मरण हुकुम वर्त, गुरमुख आ पछाणे। नाम त्याए ता सतगुर पाए, जो इच्छे सो फल पाए। नानक तिसदा सब किश होवे, जे विचों आप गवाए। सूही महला तीजा, काया कामण अत सवालेओ, फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। गुर का शब्द सुमाले, हर की भगत सदा रंग राता, होमे विचों जाले। वाह वाह पूरे गुर की बाणी, पूरे गुर ते उपजी साज समाणी। अरहाव काया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर, जग जीवन दा तावस। सब ना करे प्रतपाला, काया कामण सदा सुहेली, गुरमुख नाम समाला। काया अंदर या पे वस, अलख न लखया जाई, मानमुख मुगद बूझे नाही, बार पालन जाई। सदगुर सेवे सदा सुख पाए, सदगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ, भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजार। इस काया अंदर नाम नौ निध पाईए, गुर के शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे, आपे तोलन हारा, यो मरतन जवाहर माणक, इसका मोल अफारा। मोल किधगी नाम पाईए नाही, नाम पाईए गुर विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सा परम खुलाई, जिसनु दे सोई जन पावे, होर क्या को करे चतराई। काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसाद दीपाई। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जित संसारा। सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गौण पासारा, पूरे सदगुर आप दिखाया। सच नाम निस्तारा, सा काया जो सदगुर सेवे, सच्चे आप सवारी। विणनावे दर टोई नाही, ता जम करे खुवारी। नानक सच वडियाई पाए।

सुर्ग अवतार माया तंदया सोदत सोदत सोद तत दी चारिया ना बिना सुख नाहे सर पर हारिया आवे जाए अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सावाद जोनी परम ते जिनको पय दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोजे कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आ

दूर है। जैसी आसा तैसी मनसा, पूर है या परपूर है, हर की नार सो सर्व सुहागण, रांड ना मैं ले वैसे, नानक मैं वरसा चा पावे, जुग जुग प्रीतम तैसे।

मन चाओ कनेरा सुन प्रमेर, मैं तेरा परवस। दर्शन देख पई ने केवल, जन्म मरण दुख नस। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया पाए सुभाए। नानक साजन कौ बल जाइए, साच मिले कर आए। कर आएड़े साजना ता तन करी सरसी राम, हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम। गुण संग रहंसी खरी सरसी, जा रवि रंग रते। अवगुण मार गुणी कर छाया, पूरे पुरख विधाते। तस्कर मारवसी पंचायण, अदल करे विचारे। नानक राम नाम निस्तार, गुरमत मिले प्यारे। वार पाएड़ा बालड़िए, आस्था मनसा पूरी राम। फिर रावेड़ी शब्द रली, रव रहया न दूरी राम। प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई, तिसकी नार सबाई। आपे रसिया आपे रावे, ज्यो ते दी वड्याई। अमर अडोल अमोल अपारा, गुरपूरे सच पाई है। नानक आपे जोग संजोगी, नदर करे लिवलाई है। फिर उचड़िए माड़िए, त्यो लोआ सिरता जा राम। हाँ विष्णु पई देह गुणा, अनहद शब्द अगा जा राम। शब्द विचारी करनी सारी, राम नाम निशानों।

आई मन वजी वधाई। जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई नानक किरपा करके मिले विछड़ कदे ना जाई।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगासा अंतरतन बीचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसाते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर्पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाय हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूखी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे कर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रहे रंग राता राम नावृत पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रभ अंतर जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जमी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लए मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापे अहेन सुनाम ते आए इहो जगो दुत

नाही, ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सब बलिहारी, समलिया सच थान, मान महत सच पाया।

और आत गैर गंभीरा तुम फिर हम बहुरिया राम तुम वड्डे वड्डे वड़ उचे हों इतनी कलौरिया राम हों किशनागी।

गुरमुखे सदकरणी सारी बिनसे प्रंपे झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर्म नवनिध परे भंडारा।

तिस जेवड़ अवर न कोई आदि अंत मत प्रवरव्या जल थल मही अल सोई चरण कमल जब सागर तरिया भवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा हौ निमखना छोड़ा जी।

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सूविगे सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए।

पौड़ी सच्चा अमर चलायोन कर सत फुरमान सदा निचल रब रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका भीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़िए सहोर बार तोती तूमड़ी

निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुरप्रसाद राग बिलावल महला पहला चौब दे कर पहला तू सुल्तान कहाओ मिया तेरी कवन वडाई जो तू दे सुखा स्वामी मैं मूर्ख कहण न जाई तेरे गुण गावा दे बुझाई जैसे सच मैं रहो रजाई रहाओ जो किश होवा सब की तुझते तेरी सब सुनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहेब मैं अंधले क्या चतराई क्या हो कथी कथे कर देखा मैं कथना कथना जाई जो तु पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई एते कुकर हौ बेगाना पौका स्तन ताई भगत हीन नांग जे होएगा ता खसमे नाओ ना जाई बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेश कलंदर कढ़ी तीर्थ नहावा एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुड़ जय मना आवा मन बेदया दयाल से ती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम ना ही चिंत पराई रहाओ आगम अगोचर अलाख्य पारा चिंता करो हमारी जल थल महील परपुर लीना तड़तड़ जोत तुम्हारी सिख मत सा बुद्ध तुम्हारी मंदर शावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई गंगा एक नानक की अरदासे बिलावल महला पहला आपे शब्द।

बात होवे नहीं। अपना पला सब कोई बांछ सो करे जे मेरे चितना चितैनी मन की मत त्यागो हरजन एहा पात कठैनी आन दिन हर हर नाम त्यावो गुर सतगुर की मत लैनी मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी जो पावे ते वे बोलैनी बलाबल मोहल्ला चौथा आनंद मूल त्यायो पुरखोत्म अन दिन अंध आनंदे धर्म राय की कान चुकाई सब चूके जम के छंदे जप मन हर हर नाम गोविंदे वड़भागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रघाओ साकत मूड माया के बधक विच माया फिरे फिरंदे तृष्णा जल तिरत के बांधे जो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे से उधरे वड़भागी सेव

मुए अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुए निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तन सार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम होता। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब।

ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही जरना। अरगाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना। कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड़ भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसु करत जन्म फुनमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, आगन सागर बूढ़त संसारा। नानक बां पकर सदगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तान मन तान अर्पो सब अपना, कामन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रामंगन, तू पेखत सोभा मेरे आंगन। रखाओ आनक जुत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो, मत बुसुरत नही चतराई, ता मिलिए जान लय मिलाई, नयन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सबल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रसम में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे। रखाओ तिखा भूख बो तप्त व्यापया, शीतल पय हर हर जस जापया, कोट जदन संतोख न पाया, मान तृप्ताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा बड़ भागी पाइये, मिल साधु हर नाम त्याइये, पार ब्रह्म प्रो तेरी सरना, केल भी काटे पर गुर के चरना। रखाओ आवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग हुए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे।

काहू संग न चालही माया जंजाल ऊठ सुधारे शदरपत संतन कै ख्याल रहाओ अहंग बुद्ध को बिनसना ए तुरकी ढाल बोजूनी जन्मे मरे बिख्या बिकराल सत बचन साधु कह निध जपे गोपाल सेमर सिमर नानक तरे हर कै रंग लाल बिलावल मोहल्ला पंजवां सहज समाध अन

अवसर दुलभाया, अंतर्यामी आप प्रभु सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया, मद कूलो मान उख जान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रप है राया, बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे अनक शिदर मन में टके, निर्मल दृष्टि हे क्यों बिस्तरे प्रा मने ते, जिसके गुण एह प्राप तज रचे जे आन स्यों, सो रलिगे खे हे रघाओ, सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेहे, जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी एह, कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे, ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेहे, दास दास को दासरा नानक कर लेहे, बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर सुमरथ प्रभ पूर्ण गुणतास, जनका नाम आधार है प्रसरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रखाओ, आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निधे सास सास संहारे, करणहार जो कर रहा साई वड्याई, गुर पूरे उपदेश आ सुख खसम रजाई, चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुकुम पछाता, न मिनसते न छोड़ जाए,

रगाओ औगद हर का नाम है जित रोग ना व्यापै साध संग मन तन हित फिर दुख ना जापै हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु सरनाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवां पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिसे फिटिया ताके सुख परवेश।

भगत आराध्य एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार शरण परे प्रतेरिया प्रभु की वड्याई नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई बिलावल मोहल्ला पंजवा सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास करतारपुर करता वसै संतन कै पास रखाओ बिघन न को लागता गुर पै अरदास रखवाला गोविंद राय भगतन की रास तोट न आवे कदे मूल पूर्ण पंडार चरण कवन मन तन बसे प्रभ पगम अपार बस्त कमावत सब सुखी इस ऊन ना दिस संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीश है जय जयकार सभे करे सजथान सोहय जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया बिलावल मोहल्ला पंजवा हर हर हर आराधिये होइए आरोग रामचंद की लिस्ट का जिन मारिया रोग रखाओ गुर पूरा हर जापिए नित कीचे भोग साध संगत कै वारणे मिलिया संयोग जे सिमरत सुख पाईए बिन से बियोग नान

रामदासपुर इने गुरुदेव रखाओ। सदा सदा कर त्याईये किस विघन न लागे, नानक नाम सलाहीए पए सुमन पागे। बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधिए मिल साध समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम पागे। राम नाम जो जन जपै आन दिन सत जागै, तंत मंत न जो गई तित चाख न लागै रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागै, आनंद मंगल रस राम रंग।

सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन जी सगल दयाल पै हर हर नाम चीन रखाओ पूर रहे सर्वत्र मैं।

दो पदे कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार ते मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ बिस्मन बिस्म पाए जो पेखेओ कहन न जाए वडियाई मगन पै ऊहां संगमाते ओ

पंजवा ऐसे काहे फूल परे करे करावे मुकर पावे पेखत सुनत सदा संघरे रखाओ काज भ्याजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे होमन कौरा अनहोमन मीठा दिखिया मैं लपटाए जरे अंध कूप मैं परे हो प्राणी परम गुबार मुह बंद परे कहो नानक प्रभुत दयारा गुर पीटे काढ़े वहां भरे बिलावल महला पंजवा मन तरसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे

चरण गहे आम न जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इहो पदार्थ वड भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काट कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव

जो जो कीनो सो तुम जानेओ, पेखे उठाओ नाही कछ तीठ मुकरन, बड़ प्रताप सुनो प्रभ तुमरो, ओड़ अगा तेरो नाम हरन।

दूत दुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारे हो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे घर की जया। बिलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रह पत उदाहरण, राग स्वामी आप भरोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे। औद बिहावत अदक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संग तरमन जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अवमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महामुख अजान अज्ञानी रखे थार दए, तो नानक गुरपुरा फिट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां, जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मुयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्रा प्रीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि, अंध ले टेक नेर थन थन पायो। प्रभ नानक अनक गुनी राग बिलावल। महला पंजवां कर तेरवां पड़ताल।

कहत मैं याको, जैसे पाहन जल मैं राख्यो, फिर देनाए ते पानी, तैसे ही तुम ताए पशानो, भगत हीन जो प्राणी, कल में मुक्त नाम ते पावत, गुर यह फेद बतावे, कहो नानक सोई नर गरुआ, जो प्रभ के गुण गावे, बिलावल अष्टपदियां, महला पहला, कार दसवां, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, निकट बसे देखे सब सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई, वेन पै पै भगत न होई, सब धरते सदा सुख होई, ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम, गुरमुख पावस, रस रसमान रहाओ, ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई, कथ कद बाद करे दुख होई, कद कहने ते रहे न कोई, बिन रस राते मुक्त न होई, ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई, मान वो कथनी है पर रहत न होई, ना वो फूले थाओ न कोई, मन माया बंध्यो सरजाल, कड़ कड़ व्याप रहे हो बिखनाल, जो अंज तो दिसे काल, कार्य सीधो हृदय समाल, सो ज्ञानी जिन शब्द लिवलाई, मन मखहु में पद गवाई, आपे करते भगत कराई, गुरमुखे आपे दे वड़ियाई, रैन अंधारी निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचल कशोत, वेद पुकारे भगत स्रोत, सुन सुन मन वेख जोत, शास्त्र सिमरत नाम गरड़ामंग, गुरमुख सांत उत्तम करामंग, मनमुख जोनी दुख सहामंग, बंधन टूटे एक नाम वसामंग, मन्ने नाम सची पद पूजा, किस वेखा नाही को दूजा, देख कहो पावे मन सोए, नानक कहे अवर नहीं कोय, बिलावल महला पहला, मन का कहया मनसा करे, यो मन पुन पाप उचरे, माया मन माते तृप्त न आवे, तृप्त मुक्त मन साचा पावे, तन तन कलत सब देह अवभाना, बिन नावे किस संग न जाना रखाओ, की तेरस पोक खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसम में ठेरी, खाकू खागर ले सब फैल, बिन सब दे नहीं उतरे मैल, गीत राग तन ताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे, दूजी दुर्मत दर्द ना जाए, छूटे गुरमुख दारू गुण गाए, होती उजल तिलक गलमाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला, नाम सार माया मद पिया, बिन गुर भगत नहीं सुगतिया, तूकर स्वान गर्द मंजारा, पशु मलेश नी चंडाला, गुरते मोह फेरे तिन जोन पवाईये, बंधन बाध्या आईये जाइये, गुर सेवा ते लहे पदार्थ, हृदय नाम सदा किरतार्थ, साची दरगे पूछ ना होए, माने हुक्म सीजे दर सोए, सदगुर मिले ता तिसको जाने, रहे रजाई हुक्म पछाणे, हुक्म पछाण सचे दरवास, काल विकाल शब्द पै नास, रहे अतीत जाने सब तिसका, तान मन अर्पे है इहो जिसका, ना उ आवे ना उ जाए, नानक साचे साच समाए, बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवां, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, जग कौआ मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठ अभिमान, बिन नावे पाज लहे गनदान, सतगुर सेव नाम से मन तीत, गुर पेटे हर नाम चेतावे, बिन नावे होर

तीर लगैया मन की बिरता मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया राम गुर मोहन मोहे मन लैया हूँ आकल विकल पई गुर देखे हौन लोड पोड होए पैया रहाओ हौ निरखत फिरो सब देह दिसंतर मैं प्र देखन को बहुत मन चैया मन तन काढ़ दियो गुर आगे जे हर प्र मार्ग पंथ दिखैया कोई आण सुंदे सादे प्रव केरा अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काढ़ दियो चरणा तल जो हर प्र मेले मेल मलैया चाल चल सगी हम प्र प्रबुद्ध गुण कामन कर हर प्रभ लैया भगत वत्सल ओआ को नाम कहित है तरण प्रभु तिस पाछे पैया खिमा सीगार करे प्र खुशियां मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस पो करे प्रा मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पैया हर हर हार कंठ गए बनया मन मोती चूर वड़ गहन गहनैया हर घर श्रद्धा से वशाई प्र छोड़ न सके बहुत मन पैया तय प्रभ आवर अवर किस कीजे तब बाद सीगार फोकट फोकटैया कियो सीगार मिलन कहताई प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया हम तेरी तू अगमुख साई क्या हम करे तेरे बस पैया दया दीन करो रख लेवो नानक हर गुर शरण समैया बिलावल मोहल्ला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन श्रद्धा मन बहुत उठैया गुर देखे श्रद्धा मन पूरी क्यों चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया मेल मिल सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रा मेले मैं तस आगे सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मन तन एक बेदन मैं प्र देखे बिन नींद ना पैया वैदक नाटक देख पोलाने मैं हिरदे मन तन प्रेम पीर लगैया हाँ खिन पल रहे ना सको बिन प्रीतम ज्यो बिन अमल अमली मर गईया जिन को प्यास होए प्रभ केरी तिन अवर न पावे बिन हर को दुईया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे हाँ तस विटो बाल बल कुम गईया अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले जा सत सत सतगुरु शरण पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत शरण जी आवे प्रभ आए मिले कन टील न पैया तार करके या चार बधाए मन पाखंड कर्म कपट लू भैया बेसवा कह कर बेटा जन्मया पिता ताए क्या नाम सवैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर घर भगत जमैया भगत भगत करते घर पाया जा हर घर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकुर कृपा थारी बां पकर नानक कड़ लैया राग बिलावल महला पंजवा अष्टपदी कर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की उपमा जात ना कही तज आन शरण गही रखाओ प्रभ चरण कमल अपार हौ जाओ सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे तज आन कते ना जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़ नाव संत उधार पय तरे सागर पार मन डोर प्रेम प्रीत ई संत निर्मल रीत तज गए पाविकार हर मिले प्रभ निरंकार प्रापेखिये विस्माद जग अंध पूर्ण साध न डोलिए एत

गोविंद के सब इश पुजामी राम नानक उधरे जप हरे सहू का स्वामी राम रखे नेड़े अपने राम संगे ते लोइन नीके राम प्रापेहित इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया दिखिया रस पीके राम नानक जल जले समाया।

तू सर्व व्यापी, तुम समसर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी ही बलावल, नेत उट कोरी गागर आने, लीप्त जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूजे, हार हार रस लपटेओ, हमारे कुल कौने राम कहो, जब की माला लई निपूते, तब ते सुगना पयो रखाओ, सुनो जिठानी, सुनो दिरानी, अचरज एक पयो, सात सूत इन मुंडिये खोए, क्यों मुंडिया क्यों नाम होयो, सर्व सुखा का एक कर स्वामी, तो गुरु राम दयो, संत प्रहलाद की पैज न राखी, हर नाश नख बिदरेओ, करके देव किदर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो, कहेत कबीर सगल पाप खंडन, संत है लय उधरेओ बिलावल, को हर समान नहीं राजा, ए पूबत सब दिस चार के, झूठे करत दिवाजा रखाओ, तेरो जन होए सोए कद डोले, तीन पवन पर शाजा, हाथ सार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा।

जे हर त्याग अवर की आस कीजे ता हर नेफल सब काल गवासा मेरे मान हर सेवे सुख दाता स्वामी जित सेवे सा पुख लखासा मेरे मान हर ऊपर कीजे

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे

लूट लेहे सागत पद खोवे साध जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जो है

राम रतन पसे मन आए, सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निट कर जान। पाए भगत प्रभु कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहूं सचवा पार। दास जिना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गूंड अष्टपदियां, महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सबल मूर्त।

कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे ध्याना अभी कभी किशु न जाना तेरा एको ना पछाना ना जाना हरे मेरी कमन गते हां मूर्ख अज्ञान शरण प्रा तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रखाओ तहू जीड़ा उब चढ़त है कभू जाए पयाले लोभी जीड़ा तिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लखाए मंडल मैं आए जीवन साझे माई एक चले गम देखे स्वामी पाए बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसी बाप न माई परम तनांग जे तू देव है अंते हुए सकाई राम कली मोहल्ला पहला सर्व जो तेरी पसर रही जय जय देखा तय नर हरी जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडया क्यों कर उतरो पार स्वामी रखाओ जय भीतर कड़ भीतर बसया बाहर काहे नाही तिन की सार करे नित साहिब सदा चिंत मनवाही आपे नेड़े आपे दूर आपे सर्ब रहा भरपूर सदगुर मिले अंधेरा जाए जय देखा तय रहा समाए अंतर सहसा बहार माया नैनी लागस बाणी अरुणत नानक दासन दासा प्रतापेगा प्राणी राम करी मनला पहला जे दर वसे कमन दर कही है दरा पीतर दर कमन लहे जे दर कारण फिरा उदासी सोदर कोई आए कहे किन बेसा गर तरी है जीव तिया न मरगे रघाव दुख दरवाजा रोहर खवाला आसा अंदेसा दुई पट जड़े माया जल खाई पानी कर बांधया सत के आसन पुरख रहे किंते नामा अंत न जानिया तुम सर नाही अवर घरे ऊंचा नहीं कहना मन में रहना आपे जाने आप करे जब आसा अंदेसा तब ही क्यों कर एक कहे आसा पीतर रहे निराशा तो नारग एक मिले एन विद सागर तरिये जीव त्या मरिये हाओ दूजा राम कली मनला पहला।

तुम मैं मान कलाला, तुम देव उत्ते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूर है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहे।

करनो मद बांसुरी बाजे जेवा तुन आगाजा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृतकारी पेखे पेखन हार दयाला जेता सा सीगारी रखाओ आखार मंडली तरण सबाई ऊपर गगन चिंदोआ पनम चूला करत अकेला जल ते उपत हुआ पंच तत कर पुत्रा कीना किरत मिलावा हुआ चंद सूरज दु जरे चिरागा चौ कुंड पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक पीतर साते पिन पिन हुए पा दिखावे सभो निरारी पाखे तार कर नृत होवे दिन राती फड़कड़ वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आए जाए हुए तूरा कहो नानक

गर्भ है परया, जप नाथ दिन रहनाई, तेरी खिंता दो दिहाई, रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी, मेरी तेरी मुंद्रा ताई, मांगे टूका तृप्त न पावे, नाद छोड़ जाचे लाज न आवे, क्याल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजे नित उदासेरा, गुर गुर कीते बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसन हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंता नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपया नाथ दिन रहनाई, हुन पाया गुर गोसाई, रहाओ दूजा राम कली महला पनवा, करन करा मन सोई आना दिसे कोई, ठाकुर मेरा सूढ़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे घर समीठा, गुरमुख किने विरले डीठा, रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम, पीवत अमर पय ने काम, तन मन शीतल अग्नि निवारी, अंधरू प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब कुछ तेरा, सब बलिहार जाओ लख बेरा, तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया, खोल किवारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब पड़दा टूटा, हौ तेरा तू मैं मन मूठा, राम कली महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, जिस गुर कहो सद बलिहारी, ताज मारे पूरे।

राय सो नर भौर न जो नहीं पाए जाके अंतर पलटो आप ताको नाही दुख संताप ला रतन से पाले परया सगल कुटम ओ जन ले तरिया।

जिसे सहाई हुए भगवान अनक जतन ओ आके सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा ताकी केतक वर्ण बल बल जयगे ताके चरण तिन्ही किया जब तव ध्यान अनक प्रकार किया तिन दान भगत सोई।

माया मोहया टेढ़ो जात अभागे तय लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रखाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी सागत की बेद नयन हो डीठी ऊड़ कपट अहंकारी जाना नाम सुनत जन बिशु डसाना माया कारण सदगी चू है मान मुख कभे न उस्तत करे निरपो निरंकार दातार इसु प्रीत न करे गवार सब सहा सिर साचा।

संग पवजल तरीगे प्रभ के रंग देही तोय न उतरै मैल होमे व्यापे दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाए ताका रोग तगल मिट जाए

सच सहज सुख पावे मीत थाए मेरा अत पारा किन में था प्यो था पनहार जिबन अवर न कोई जनका राखा सोई तार कृपा अरदास सुनीजे अपने सेवक को दर्शन दीजे नानक जापी जप जाप सब ते ऊच जा का प्रताप राम कली मोहल्ला पंजवा बिरता परवासा लोक ठाकुर प्राप्ते री टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर फिटे गुणतास एको नाम ते आए।

जन्म विहानो अहंकार अरवात तृप्तन आवे विखिया साध परमत परमत महा दुख पाया तरी न जाई दुत्तर माया काम न आवे तो कार कमावे आप बीज आपे ही खावे अराखन को दूसर नहीं कोए तौ निस्तरे जो कृपा होए पद पुनीत प्रभ तेरो नाम अपने दास को की जय दान कर कृपा प्रभ गत कर मेरी शरण गही नानक प्र तेरी राम कली मोहल्ला पनवा ए लोके सो पाया नहीं भेड़त धर्मराया हर दरगे सो बावंत हुन गर्भ नहीं बसंत जानी संत की मितराई कर कृपा दिनो हरनामा पूर्व संजोग मिलाई रहाओ गुर के चरण चित लागा तन तन संजोग सुभागा संत की तूर लागी मेरे माथे इलबग दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जान का सफल दर्स दीठा ना प्रभु का काड़ काड़ बूठा मिटाने सब कल कलेश जिसते उपजे।

फिर उठ लागे। संसभा बिन करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोय, नानक ताकी परम गद होय। राम कली महला पंजवा, जोत पावे सो थिया, सदा सदा हर की शरणाई, ब्रबन नाही आन बिया, रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दिसे, इन में किशु न संग लिया, बिखे ठकोरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया, निंदा कर कर बहुत विगूता, गर्भ जो में कृत पया, पूर्व कमाने छुटे नाही, जम दूत ग्रास्यो महा भया, बोले झूठ कमावे अवरा, तिस न बूझे बहुत हया, असाध रोग उपजिया संदूखन, दे बिनासी महा खया, जिन्हें निवाजे तिन ही साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली मुहल्ला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सखाई, जाका सिमरन तिरथा ना जाई रहाओ, दर्शन पेहत होए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सवारे सगले तन के, जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतत उदाहरण कृपा निधान, सदा सदा जयगे कुर्बान, निर्मल मत देज दान, तजे विकार बिन से अपमान, एक तिहाई के साध के संग, पा बनासे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास, खट खट रब रया गुणतास, दर्श दे तारो प्रव्यास, नित नानक चितवे सच अरदास।

जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तान तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुहेत वधाए, की नाम सार है परम गया, रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, ओन दान इसनान ना संजम, सास दिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारे, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुर शब्द ना गत पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करें टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हमें रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आपद देखे, सागत मान अपमान भया, जिसका इहो तान तान सो पर लेवे, अंतर सहसा दुख पया, अंतकाल किस साथ ना चाले, जो दिस सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, दे कुटंब मायाग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जा आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया, जो कुछ करना सो कर रहया, बख्शन हारे बख्श लया, जिन तो चाखिया राम रसायन, तिरकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुग्ध पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते ब्रगत पया, आप मार गुरमुख कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी मोहल्ला पहला, जत संजम साज दृढ़ाया, सा सद रहीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिवलागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगन पुर दृट समय सार, अनहत शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन पर पुरलीना, जेवा रंग रसीना, मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना, एक मैं सर्व सर्व मैं एका, ए सब गुर देख दिखाई, जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, हो प्रभ लखन ना जाई, दीपक ते दीपक परगासया, तिर पवन जो दिखाई, सच्चे तख्त सच महली बैठे, निरपो ताड़ी लाई, मोहे गया बैरागी जोगी, काड़ काड़ किंगरी वाई, नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सुखाई, राम कली मोहल्ला पहला, औ हठ हस मड़ी करशाया, तारण गगन कल तारी, गुरम केती शब्द उधारी, संतो रखाओ, ममता मार ओ में सुख, तिर पवन जो तुम्हारी, मनसा मार मन मैं राखे, सतगुर शब्द विचारी, सिंगी सुरत अनाह दवाजे, फड़कड़ जोत तुम्हारी, पर पांच बेण तई मन राखिया, ब्रह्म अग्न परजारी, पांच तत् मिल ऐरस दीवक, निर्मल ज्योत पारी, रस लौके इव तन किंगुरी, वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी मैं आसन औदू, अलख अगम अपारी, काया नगरी इव मन राजा, पांच वसे विचारी, शब्द रवे आसन कर राजा, अदल करे गुणकारी, काल विकाल कहे कहे बपरे, जीवत मुआ मन मारी, ब्रह्मा विष्ण महेश एक मूर्त, आपे करता कारी, ताया सो तरे पवसागर, आत्म तत् विचारी, गुर सेवा ते सदा सो पाया, अंतर शब्द रव्या गुणकारी, आपे मेल लय गुणदाता, होमे तृष्णा मारी, त्रै गुण मेटे चौथे वर्त, एहा भगत निरारी, गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने, हृदय एक मोरारी, मनवा अस्थिर शब्द राता, एहा करणी सारी, वेद बादरा पाखंड औदू, गुरमुख शब्द विचारी, गुरमुख जो कुमावे औदू, जत सत शब्द विचारी, शब्द मरे मन मारे औदू, जो जुत विचारी, माया मोह भवजल है अवधू, सब तरह कुलतारी, सब सूरज उचारे औदू, बाणी भगत विचारी, यो मन माया मोहया औदू, निरसे शब्द विचारी, आपे बगसे मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी, राम कली मोहल्ला तीजा, अष्टपदियां एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा, कन्नी पाए जोगी, खिंता कर तू दया, आमन जान विपूत लाए जोगी, ता तीन पवन जन लाया, ऐसी किंगरी बजाए जोगी।

ताहु रोग सोग परमीजा, ताहु पवन तार जात बेगाए, संत बेगावे कीर्तन गाए, ताऊ बेगावे दिन रैन चाल, ताऊ बेगावे सो पिड़माल, ताऊ बेगावे बाल पढ़ावत, संत बेगावे हर जगावत, ताऊ बेगावे नट नाटक निरते, ताऊ बेगावे जिया ए हिरते, ताऊ बेगावे राज में डरते, संत बेगावे हर्ज करते, ताऊ बेहावे मता मसूरत, ताऊ बेहावे सेवा जरूरत, ताऊ बेहावे सोधत जीवत, संत बेहावे हरस पीवत, जित को लाया तित ही लगा।

माद गर्भ संकट ते शूड जाका नाम से मृत हो जाए तैसे संत जना राखे घर राय ऐसे राखन घर दयाल जत का देखो तुम प्रतपाल रखाओ जल पीजो तिखा मिटंत तन विसे ग्रे आवत कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किसानी जो राखे रखवाला मात पिता दया जो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखे कंठ लाए जो अंधले पेगत होए आनंद गूंगा भगत गावे बोचंद पिंगल पर्वत परते पार हर के नाम सगल उदार जो पावक संग सीत को नाश ऐसे प्राशित संत संग विनाश जो साबन पापर उजल होत नाम जपत ता परम पखोत जो चक्री सूरज की आस जो चात्रक बूंद की प्यास जो कुरंक नाद कर्ण समाने त्यो हर नाम हर जन मने सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दयाल पैता आए चीत दया तारी तन तारण हार बंधन ते होई छुटकार तब थान देखे नैन अलोय जिबन दूजा अवर न कोय परम पै छूटे गुर प्रसाद नानक पेख्यो सब समात राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिए प्रसगल तुम्हारी तारना यो मन हर के नाम पधार।

राख लिगे भगत जन अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरे एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन प्रलगा मीठा पाना, सब इश पुन्नी आस पूरी मिले सदगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आ मेले फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली मोहल्ला पंजवा शांत सलोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नान प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल मैयल सोए जियो, जल थल मैयल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सफागे सर्व गुण जगदीसरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पय संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीनानाथ प्रदपाल जियो, प्रदपाल अचुत पुरख एको तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने।

तार जय देखा ते एक तू अंतना पारावार थान सनंतर रभरया गुर शब्दी विचार अण मंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखन हार दया करे प्रा मेल रहे खिर में टाए उसा।

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुण रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो में मेड़।

कथिय ले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कथिय ले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जलाई अले क्यों निरभो कर जाइए सह संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर के शब्द होमे बिख मारे ता निरकर हो वे वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे समाई एस शब्द को जो

दूर किया। सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रगास्थिया। जीवित मरे ता सब कुछ सूझे अंतर जाने सर्वदया। नानक ताको मिले वडाई आ पछाणे सर्व जीया। सच उपजे सच समावे साचे सूचे एक मया। झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौण पया। आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बगसलया। एका बेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरया। तो बुझे जिस आप बुझाए गुर कै सबसो मुक्त पया। नानक तारे तारण हारा होमे दूजा पर हरिया। मनमुख फूले जमकी कान पर जो है हाने हान।

सब तीर्थ गह ओ तपा कैसे परमगत लह गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा सो तपा ये ओ तप का ले सदगुर नु मिले शब्द समाले सदगुर की सेवा यो तब प्रवान।

परम पद ताका भूखा होए, जिसका भोजन नानका विरला पाए कोए। महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन, जे पढ़ कर भोजन करेन उदरे कारण अपने बैले पेख करेन। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौन करेन, पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत बिछोड़ियन, वे सच्चा असराओ घर दर सबो सच है। जिस विच सच्चा नाओ तब सच्चा हुक्म वरतद, गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तगत सच्चा। बै सच्चा करे न्याओ तब सचो सच वरतद, गुरमुख अलख लखाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह। तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा, रैनायर माय अनंत है ऊड़ी आवे जाए। भाणे चले अपने बहुती लय सजाए, रैनायर में सब किश है करमी पल्ले पाए। नानक नौनद पाई है जे चले तिसे रजाए। महला तीजा है जे सतगुर ना सेवेओ, विच होमे जन्म विनाश। रसना हरसना चखेओ कमल न होयो परगास, बिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश। एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिग वास, जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास। ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास। जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यों विचे गिरे उदास। जन नान करे कराया सबको क्यों पावे तिब हर गुण तास। पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी, आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी। सिमरत सास्त साजियन पाप पुन ग्रंथ गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी। तबे आपे आप वर्तदा आपे बख्स मिलाई, वाहो वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए। जो सह रत अपने तेन तन लोभ रत न होए। पय पय तन खीन होए लोभ रत विचो जाए। ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुरमत मैल गवाए। नानक तेजन सोने जो रते हारंग लाए। महला तीजा राम कली रामन वसया ता बनया सीगार, गुर के शब्द कमल बिरसया ता सौंपया भगत भंडार। परम गया ता जागया चूका अज्ञान अंधार, तेस नु रूप अत अगला जिस वर नाल प्यार। सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार, मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार। बिन घर भगती सीगार करे नित जम्मे हुए खुआर, सहे सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार। नानक सच्चा एक है दो जगह संसार, चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा बिन सदगुर सेवे सांत न आवई, दूजी ना ही जाए। जे बो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए, तिन जम्मन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए। जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई नाहे, तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सहाहे। नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे। पौड़ी आप

का सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सेवत सलाहन भगत विरले दितियन तौंपे जिस भंडार तिर पुछ ना लीती।

हुक्मे आमण जान रखाए, नानक जा को भक्ति लाए पौड़ी। हौंस ठाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार, हौंस ठाडी बलिहार जे गावे गुण अपार। तो ढाडी तन तन जिस लोड़े निरंकार, तो ढाडी पागठ जिस सच्चा द्वार बार। ओ ढाडी तुध ते आए कराने दिन रहनार, मंगे अमृत नाम न आवे कदे हार। कपड़ भोजन सच रहिंदा लवे तार, तो ढाडी गुणवंत जिसनु प्रा प्यार। श्लोक महला पंजवा। अमृत बाणी अम्यो रस अमृत हर का नाओ, मन तन हिरदे सिमर हर आड़ पैर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए मन में लायो पाओ। सूग सहज आनंद कणा प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी पाओ भक्त नहीं साधी रघाव पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनं तरनाही दीन दयाल के पाल दमुदर भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन होए मुक्त द्वार जाए बैकुंठ नहीं संसार निरपो के कर बजावे तूर अनगत बजे सदा परपूर ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कद नाहे रघाव जे सिमरन नाही ननकार मुक्त करे उतरे।

रखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रघाव आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुवार पुरंदरिये हस्त विनोद विचार करती है चीज सोगा ग्रह राखी अले मंदर एक द्वार जा जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीज सो बछरा राखी अले।

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दरस, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पारस है ना परस, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रगा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नि समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहा नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहा नरंजन रमैया होए रगाओ, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाड पर आला, आले पीतर दाती, जागत रहे सो कहू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री

क्या पावे मन प्यास बौद्ध दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करज पुरख विधाते सो सदा सदा तुल त्यावे कवन जोग कवन ज्ञान त्याना कवन गुणी रीझावे सोई जान सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावे साई मत साई बुद्ध स्यानप जित निमक न प्राविसरावे संत संग लग क्यों सुख पायो हर गुण सदगी गावे देखो अचरज महा मंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लायो।

प्रगाओ आज्ञा मान जान सुख पाय सुन सुन नाम तुहारो जियो ईगा ऊहा हर तुम ही यो गुरते मंत्र दृढ़ियो जब ते जान पाई ए बाता ताब कुशल खेम सब तीयो साध संग नानक परगासियो।

सतगुर ज्ञान मजन गए नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अदकाई परसुआ गण उधारे पारस निपरस भय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड गए साबत तबला किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कड़े पनगारे। सागत सिउ मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन विश्वा जो डसिए तज सागत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अम

प्रहलाद जन हर नागस पकड़िया, हर राख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया। ओ जन्म मरने वार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया, हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया। हर हार हर उतारे जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले घर प्रवजाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन घर प्रापाया, तिन पूछो घर की बाता, पाए लगो नद करो जो दरिया, हर मिल लो कर्म वेदाता, लिलाड़ लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्र आए मिले सुख पाया, सब केलभ पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंक पाये वडभागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, सब सिद्ध साधक मुनजना, मन पावनी घर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो, रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेत्यो हर रायो, हरियान में लियो सदगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रमस्त के तुर लिखिया, गुरमती घर लिव लायो, पंच शब्द दर गए बाजिया, हर मिलो मंगल गायो, पतत पावन नाम नर हर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जो नी गालिए, ज्यो डोन जरे गलायो, मत दे घर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नाम में रहो लागो, जन नानक नाम समायो, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास पया गुर पाया, हर जप्यो प्रम्पो पागा रगाओ, पय पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, केल बिख खीन पय सांत आई, हर उतारियो वडभागा, मानमुख रंग कुसुंभ है कछुआ, ज्यो कुसुम चार दिन चागा, खेल में बिनस जाए परताप, दंड तरमरा एका लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी, जो रंग मजीठ बो लागा, काया कापर चीर बो फारे, हार रंग न लहे सपागा, हर चारो रंग मिले गुर शोभा, हार रंग चलू ले रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारे, जो हर चरणी जन लागा, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरे मान भाज हर हर नाम गोपाला, मेरा मातन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला, रहाओ गुरमत नाम त्यागे हर हर, मन जपगे हर जपमाला, जिनके मस्तक लिखिया, हर मिलिया।

साध हर समर्थ की सरना जीव पिंडत नरास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवने का मूल रब रया सरबत ठाई सुख मो अस्तूल आल जाल विकार ता सब हर गुणा नित गाओ गचूड़ नानक दान मांगे देव अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवां प्रभ समर्थ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किस अंत

कोय, पूरे या सगल मंडल एक स्वामी सोए, करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ, माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बेन बाजे, मदर मदर तुन अनहद गाजे, रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन किसन ओढ़े काम।

तेरा नाम त्याय तिनको सद मिले। बाबा मैं कर्महीन कूड़ियार नाम न पाया तेरा, अंधा परम फूला मन मेरा रखाव। साध कीते दुख पर फोड़े पूर्व लिखे माए, सुख थोड़े दुख अगले दुखे दुख विखाए। विछड़िया का क्या विछड़े मिलिया का क्या मेल, साहेब सो साल आईये जिन कर देखिया खेल। संजोगी में लावड़ा इन तन कीते पोग, वे योगी में विछड़े नानक पी संजोग। मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लिख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई। मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मान काहे कर से माना, उठ चलना खस में पाना रखाओ। ताज साध सहज सुख होई कर छड़ने रहे न कोई, किस खाजे किस तर जाइये जे बहुड़ दुनिया आइये। सदकाया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए, कर से सुखाली सोवे हथी पौंदी काहे रोवे। कर कुमन वाणी पाई पा पत्थर तरन न जाई, बहु बेड़ा जी हो चढ़ाऊ कहो नानक देवे काहू। मारू महला पहला कर पहला करणी कागद मन मसवाणी, बुरा पला दुए लेख पाए ज्यों ज्यों किरत चलाए। त्यों चलिगे तौ गुण नाही अंत हरे चित।

ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इस नानी, हर गुण पूजे पाती, एको नाम एको नारायण, ते पवन एका ज्योति, जेवा डंडी ओकर शाबा, तुलो नाम अजाची, एको हाट साव सबना सिर, वणजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु नबेड़े, सो बूझे जिस एक लिव लागी, जियो रहे ने प्राती, शब्द विसाए परम चुकाए, सदा सेक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख, ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बार कर एको, नानक पया उदासी, राग मारू महला पहला, कर पंजवा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, अहिंस जागे नींद न सोवे।

एक सच्चा सब सेवदी तुर भाग मिला बाग होए, गुरमुख मेरे से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भक्ति सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए, ओना मितिया पवरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास, नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते शीतल करे, मनूरहो कंचन होए सो सच्चा सालाइए। तिस जीवड़ अवर न कोए, मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ। सतगुर के भजन आराध तू अन दिन गुण गाओ रखाओ, गुरमुख एको जानिए जिन सतगुर दे बुझाए। सो सतगुर सालाइए जिदू ए सोजी पाए, सतगुर छोड़ दूजे लगे क्या करन अगे जाए। जां पुर बदे मारिए बहुती मिले सजाए, मेरा प्रभ वे प्रवाहो है ना तिस तिल ना तमाए। नानक ते शरणाई पज पौ आपे बख्श मिलाए। मारू महला चौथा कार दूजा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी, हर घर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भक्ति पाए तरे, भगत वच्छल हर नाम किरतार्थ गुरम कृपा करे। मेरे मन नाम जब उधरे ध्रुव प्रहलाद बिदरदासी सुत, गुरमुख नाम तरे रघाओ। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ भगत जना उधरे, नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दुख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उधरे सब किलबुख पाप टरे, जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसवा रपत अजामल उधरे मुख बोले नारायण नर हरे, नाम जब उग्र सैन गद पाई तोड़ बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे, सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उधरे। जन नानक हर कृपा तारी उर तरे ओ नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिवलाई, साधक मुन जपया जति सती संतोखी ताया मुख इंद राध करव्या। शरण परे जप्यो ते पाए।

भगत परे पंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा समाली हर हर नाम जपो मेरे जीवड़े जप हर हर नाम छिड़ावे जियो रखाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचे हर देव पसाओ हर सत सत सदा हर सत हर सत मेरे मन पावे जियो नवे शिदर सर्वे अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मल ले जावे जियो माया मोह बिखम है पारी क्यों तरगे दुत्तर संसारी सतगुर बोध दे प्रसाद।

छोड़ जाए खिन पीतर ताको, ओआ को फिर ताव सरे, अपने प्रभ को क्यों ना संहार सरे, बैरी संग रंग रच रसिया।

असाध रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू टारियो प्रा बिसत महा दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए हो सच।

हरख सोग लोभ मोह रहत है। निर्मल हर के संता तिनकी तूड़ पाए मन मेरा, या दया करे भगवंता। कहो नानक गुर पूरा मिले ता उतरी मन की चिंता। मेरा अंतर जामी हर राया, सब के जाने मेरे जी का प्रीतम। बिसर गए बक बाया हरहाओ दूजा। मारू महला पंजवां, कोट लाख सर

माया माध मन तन संग जाता तृष्णना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सा बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक किरत न जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बहुबत जोनी फिरत अनेता जय जानो तय रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन वासना बहुत विस्तारा अहं मेव मूठो बेचारा अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंधकूप ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इस ते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही।

करियो एक नाम त्याई नानक दीन नाम मांग है दुतिया परम चुकाई मारू महला पंजवा मेरा ठाकुर अद पारा मुझ सेवक बेचारा मोहन लाल मेरा प्रीत मन प्राणा मुख दियो दाना रखाओ सगले मैं देखे जोई बीजो अवर न

तन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोबत जागत गुरमंत्र रे चितार चरण सारण पज संग साधु।

दुख दर्द कलेश बिन सहे, जिस बसे मन माहे, मृत नरक स्थान बिखड़े, बिखना पोहे ताहे, रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे, अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन, ऊच अगम अगाह, सिद्ध साधक देव मुंजा, वेद करे उचार, तेमर स्वामी सुख सहज पुंच, नहीं अंत पारा वार, अनक प्राशित मिटे खिन मह, हृदय जप भगवान, पावना ते महापावन, ओड़दान इसनान, बार बोध

तले उगाए बैसे हो, शरम ना रहे हो शरीर, मांस अगर नए व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत, दिष्टा मूत्र खोद तिल तिल, मन ना मनी विपरीत, ऊच नीच विकार सुकृत, संग लगन सब सुख शत्र, मित्र सतर ना कशु जान, सर्व जी समत कर प्रगास, प्रचंड प्रगटेओ अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है करन लागे, मन ना पयो विकात, सीत मंद सुगंध चलेओ, सर्व थान समान, जहां साक्ष तहां लागेओ, तिल ना संका मान, तो पाए अपाए जो निटे आवे, सीत ताका जाए, आप पर का कश ना जाने, सदा सहज सुपाए, चरण सरण सनात्यो मान।

बेणी संगम आठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदल।

किया जम्मण मरना गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर दिख है दुख दर्द शरीर हो जाई है। निरकर बैस रहे पोखाया ताप्त रखे ठाक रखाया। कामल विगास हरे सर सुभर आत्मराम सखाई है। मरण लखाए मंडल में आए क्यों रहिए चलना परसाए। सच्चा अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिले वडाई है। आप उपाया जगत सुबाया जिन सिरिया तिन तंदे लाया। सच्चे ऊपर अवर न दिस साचे कीमत पाई है। ऐथे गोलड़ा दिन चारे खेल तमाशा धुंदू कारे। बारी खेल गए बारी गर ज्यों निसुपने पखलाई है। तिनको तख्त मिली वड्याई निरभो मन वसया लिवलाई। खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरई तिर पवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिले सुख पावा। साचे साचे तख्त वडाई होमे गणत गवाई है। गणत गणिये सहसा जी।

आपे बख्श लए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार, औगुणियारी औगुणियार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है। औगुणियारी कंत न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, फिर का साओ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सीगार करे फिर खसम न पावे, गुणवंती सदा पिर रावे, सदगुरु मेल मिलाई है।

आई, गुरमुख होवे सो काया सुध, आपे आप मिलाएंदा, काया जे टोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएंदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख सालाहे सुख दाते, मन मेले कीमत पाएंदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वडियाई, जे दहट सोई वस जाने, गुरमुख दे ना पछोताएंदा, हर जीव सब मैं रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मलाए आपे, शब्दे सहज समाएंदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विचो परम चुकाए, नानक नाम मिले वडियाई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, आगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई ना सके तिसनु, गुर शब्दी मेल आया, तुदनु सेवे जो तुद पावे, गुर के शब्दे सच समावे, आन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हरस पाया, शब्द मरे से मरण सवार है, हर के गुण हिरदे उरतार, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाओ चुकाया, हर जू मिले आप मिलाए।

गुण में गुणी समाया, ते जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे वसाई, कीमत कौन करे प्रा तेरी, तू आपे सहज सुमा।

तिनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा, इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्राविसरे नाही, आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी, तान मन अर्प तई सब आगे, जग में नाम सुहावना।

जगत ना चुर हीड़े सच चौ नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्सो हर नाम समाने आपे भगती लायोन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोने सचे दर जाने आयथे उथे मुक्त है जिन राम पछाणे तन तन से जन जिन हर सेवया तिन हो कुरबाने सलोक महला पहला मैल कुचजी मरवड़ी काली मनो कसुद्ध जे गुण होवन ता पिर रवे नानक अवगुण मुंद महला पहला साज सील सा संजमी सा पूरी परवार नानक ऐन सदा भरी फिर कह गेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निदान पाया कृपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर चनी चाखिया हंस ठाक रखाया हर पी सदा तृप्त भये फिर तृष्णा भुख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशगे तन राविगे तन उर नाम सिगार नानक तन आगे खड़ी सोभावंती नार महला पहला ससरे पेगे कंत की कंत अगम अथाह नानक तन सुहागणी जो भावे वे प्रवाह पौड़ी तख्त राजा सोभ जे तख्ते लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से ए भूपत राजे न आखिए दूजे पाए दुख होई कीता क्या सालाइए ये जानदे बिल मना होई निचल सच्चा एक है गुरमुख बूझे तो निचल होई सलोक मोहल्ला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाग नानक से सोहागणी ये सदगुर माए सुमागे मोहल्ला तीजा मन के अधिक तरंग क्यों दर साहिब छुटी है जे राते सच रंग गूढ़े रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुटिए जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजे आपे सिट सब साजियन आपे वरतीजे गुरमुख सदा सलाई है सच कीमत कीजे गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हरस पीजे आमन जाना ठाकिया सुख सहज सुवीजे सलोक महला पहला ना मैला ना तुंदला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच महला तीजा सहज वनस्पत फुल फल पर वसे पैखंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जोजन लूजे मने स्यो से सूरे प्रधाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप शाना ज्ञानिया का यो महत है मन माये समाना हर जीव का महल पाया सच लाए ते आना जिन गुर प्रसादी मन जीतिया जग तिने जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग पवा धर कर भिख्या लेओ दर गए लेखा मंगिए केस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा

सोदर सेवहो ना कोए, ऐसा सदगुर लोड़ लहो जे जेवड़ अवर ना कोए, ते शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिरदे सच है तन मन पी सच्चा होए, नानक सच्चे हो मन्ने।

जगमय राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरे गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म ने दुख जाए आपे दाता सुखे दा आपे देस जाए। नानक एवै जानिए सब केश तिसे रजाए पौड़ी हर ना बिना जगत है निर्थान बिन नावे तृप्त नाही दूजे परम भुलाया होमे दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाई है जे बहुत लोचाही आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही आप करे किसे आखिए दूजा को नाही। सलोक महला तीजा इस जग में संति तन खटिया जिन्ना सदगुर मिलया प्रव्याय सदगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए। इत तन पाए पुख लथी तुख वसया मन आए जिन्ना को तुर लिखया तिनी पाया आए। मानमुखो जगत निर्तन है माया नू बिरलाए अन दिन फिरदा सदा रहे भुख ना कदे जाए सांत ना कदे आवई नै सुख वसे मन आए सदा चिंत चित वदा रहे सहसा कदे न जाए। नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नू मिले ता शब्द कमाए सदा सदा सुखमय रहे। सच्चे महे सुमाए महला तीजा जेने उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवर ना कोए। खाना शब्द चंगियाईया जिन खादे सदा तृप्त होए पहनण शब्द सुनाए है सदा सदा ओ उजला मेरा कदे ना होए। सहजे सतन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नौ शब्द सीगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनु आप वखा ले सोए पौड़ी अंतर जब तब संजमो गुर शब्दी जापे हर हर नाम ते आई है होमे अज्ञान गवापे अंदर अमृत पारपूर है चाख्या साध जापे जिन चाख्या से निरपो पे से हर अस्त्रा पे हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापे। सरोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना विहाजे कोए गुण का गाक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाईन जिसनु नदर करे महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप की ते करतार। नानक हुक्म मन्ने सुख पाई है गुर शब्दी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराओ खरे परख खजाने पाईन खोटिया ना ही थाओ सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याओ अमृत का रस आया मन वस्या नाओ।

न जानही दुर्जन सेती नेहो तू कै गुण हरंग मानगी महला पंजवां नानक जिस दिन कड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद तेस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला पंजवां रते रंग पार ब्रह्म कै मन तन अत गुलाल नानक विण नावे आलू दया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जां तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुर पौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा।

कर हीड़े हिक आधार त्यो संतन की रेण जित लभी सुखदा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाई है बिन सतगुर मनुमा ना लगे धर्म तीरा कल अंदर है त्यो पापी मूल न तगे अय कर करे सो अय कर पाए एक कड़ी मोहत ना लगे चारे जुग में सोदया विण संगत अंकार ना पगे होमे मूल ना छुटई विण साधु सत्संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन पंग जिन जान गुरमुख सेवया तिस कर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे डखणे महला पंजवा लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मजाऊ सोतनी चौदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोय माओ डिणना तनी अपाह हियाओ मिंजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए महला।

मैं लख वड़ते साहेब जे बिंद बुलाईया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे उड़ना साईया मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मलाईया मन अर्प्यो हो मैं तजो इत पंथ जुलाईया नित सेव्यो साहेब अपना सत संग मिलाईया सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाईया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाईया।

ते होए उदास अंजन दे सवे कोई तुक चाहन माए बिडान ज्ञान अंजन जे पाया तेल होइन परवान कहे कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतर्गत हर पेटिया अब मेरा मन कतहु ना जाए रिद सिद्ध जाको फुरी तब काहू स्यों क्या काज तेरे कहने की गद क्या कहो मैं बोलत ही बड़लाज।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे। नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सैन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सवे सरे। मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते बज जाके रे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तल ताके, हर घ हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माघी, ब्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनागी। सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी। तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा देसो तू पला। हार जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा। रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निगाले सातन, तू सुनया तमरामा। बाबी गा प्रयो बोले कोकल बाणिया, सातन सबरस चोले अंक समाणिया, हर अंक समाणी जा प्रथाणी, सा सुहागण नारे। नव कर थाप मैल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे, सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस बसर रंग रावे। नानक प्रयो प्रोचवे बबीह, कोकल शब्द सुहावे, तू सुन हरस पिन्ने, प्रीतम अपने, मन तन रब तरवन्ने। कड़ी ना बिसरे क्यों कड़ी बिसारी, हों बलिहारी हों जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हों किस केरा, हार बिन रहन ना जाए। ओढ़ गई हर चरण निवासे, पाए पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे, गुर शब्दी मन तीरा। बसे अमृत तार बूंद सुहावनी, साजिन मिले सहज सुपाए, हर स्यो प्रीत बनी। हर मंदर आवे जा प्रभावे, तन ऊबी गुण सारी, कर कर कंतर वे सुहागण, हौ क्यों कंतव सारी। कुन कनशाए बरस सुपाए, मंतन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बाणी, कर कृपा कर आवे। चेत बसंत फला पावर सुहावड़े, बन फूले मंज बार, मैं फिर कर बहौड़े, फिर कर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे। बिरे ब्रो तन छीजे, कोकल अंब सुहावी बोले, क्यों दुख अंक सहीजे। पावर भवंता फूली डाली, क्यों जीवा मर माए, नानक चेत सहज सुख पावे, जे हर वर कर तन पाए। वैसाख भला साखा वेस करे, तन देखे हर द्वार, आप हो दया करे, कर आओ प्यारे दुत्तर तारे। तुत बिन अड़ ना मोलो, कीमत कौन करे तुत पावा, देख दिखावे ठोलो। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना, नानक वैसा की प्रपावे। सुरत शब्द मन माना, माहो जेड़ पला प्रीत क्यों बिसरे। थल तापे सर पार, सातन बिनो करे, तन बिनो करेंदी गुणसारेंदी, गुणसारी प्रपावा। साचे महल रहे बैरागी, आवन देता आवा, निमाणी नितानी हर बिन, क्यों पावे सुख मैली। नानक जिड़ जाने थी जैसी।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझाव तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद अंतर प्री प्यार क्यों पिर बिन जीव गए राम जब लग दर्शन होए।

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हौ सतगुर कै बलिहारिये सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध

जिन को तुरहर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम अराध्या तिन के पाप एक निम्क सब लाते जिन गुरबचनी हर जापया तन तन ते जान जिन हर नाम जपया।

सत्संग मिलावो तुम देवो अपनो नाओ रहाओ। करो सेवा सतपुरख प्यारे जत सुनिए तत मन रहसाओ। वारी फेरी सदा कुमाई कमन अनूप तेरो उठाओ। सरपद पाले सगल समाले सगलिया तेरी शाओ। नानक के प्रापुरख विधाते

मोर, संत संग हर चरण बोहित, उदरते लय मोर, गर्भ कुंट मैं जिने तारियो, नहीं बिखे बन मैं होर, हर सगत सरन सुमरत ना।

त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल।

विखे अगर ना जली गए पूजा लीनो दास अपनो ज्योत ज्योति रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली।

राखो, रहे अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी, जत पावे सतगुर पेट, एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ में बसते, फुलवत दे अयाने, कौ कबीर जे राम न चेते हो, बूढ़े बहुत सयाने।

रूप रंग रेस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, पानी हर जाप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध को ममता, कठिन पीर अद पारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलानी, नेत्री तुंद करण पै बैरे, मनमुख नाम न जानी।

को दर कार कभू न जानस, एको दर्श त्यारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कहे विचारा, भैरों महला पहला, अगली रैन सोबत गल फाही, दिन सजंजाल गवाया, खेन पाल कड़ी नहीं प्रव जानिया, जिन एहो जगत उपाया, मान रे क्यों छूटस दुख पारी, क्याले आवस क्याले जावस, राम जपो गुणकारी रगाओ, ऊंदो कावल मानमुख मत होची।

बिन नावे नेफल मन भ्रमना रखाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाण संध्या कर्म तिकाल करे। बिन गुर शब्द मुक्त खां प्राणी राम ना बेन उर्ज मरे। दंड कमंडल शिखा सूद तोती तीर्थ गमन अद प्रमण करे। राम ना बिन सांत न आवे जप हर हर नाम तो पार परे। जटा मुगट तन पसम लगाई बत्र छोड़ तन नगन पया। राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत के बंधे भेख पया। जेते जी जंत जल थल मैयल जतर कतर तू सर्व जिया। गुर प्रसाद राख।

होए। निकर वसै सहज सुभाए, गुरमुख नाम से मने आए, आपे वेखे वेखण हार, नानक नाम रखो उर तार। भैरो महला तीजा, कल युग में राम नाम उर तार, बिन नावे माथे पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ। राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुरते प्राप्त होए, हर का पाणा मन से जन प्रवान।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निकर वासा पाया, पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक निचल साचा एकू ना ओ मरे ना जा।

जम काल सदा है सिरे ऊपर, दूजे पाए पद खोई, बैले पेख पवे दिन राती, होमे रोग न जाई, पढ़ पढ़ लूजे बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेवे परम गद पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिन्हां मन वसिया, दर साचे पद पाई, भैरो महला तीजा, मानमुख आसा नहीं उतरै, दूजे पाए खुआए, उधर न सान ना परिये कबहू, तिस न अगन पचाए, सदा आनंद राम रस राते, हिरदे नाम दुबदा मन पागी, हारगा अमृत पी तृप्ताते रहाओ, आपे पार ब्रह्म सृट जिन साजी,

थीत गोविंद जन्मा सी परम भूले नरकर्त कचरायण जन्म मरण ते रहत नारायण रखाओ कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म न मरे रे साकत ढोर सगल पराध देह लो रोनी सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी जन्म न मरे न आवे न जाए नानक का प्रभ रहो समाए भैरो मोहल्ला पंजवा उठत सुखिया बैठ सुखिया पाओ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल पिठा का अंतर जामी रखाओ तोय अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रा तू वरसंता कर सुख वस्या बार

अरहो अराम रसायन नित उड़ पीवो हार हार हार हार सुना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार पैरों महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए जन्म जन्म की मैल मिटाए।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे को कैसो ध्यान, बिन

बंद रह रती ना पावे, बिन सदगुर रोग तथे ना जावे। पार ब्रह्म जिस की नींद आया, बां पकड़ रोगों कट लाया। टूटे बंधन साथ संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। भैरो महला पंजवां, ईत आवे ता महा आनंद। ईत आवे ता सब दुख पंज, ईत आवे ता श्रद्धा पूरी। ईत आवे ता कभे न चूरी, अंतर राम राय

भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माझ, पिता पूत रल की नी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो मोहल्ला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुरु प्रदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु।

नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाक मन वसिया प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वे नाओ, भैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामन गार स्वामी।

तेरा परवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा भैरों महला पंजवां।

निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ, हर हाओ हर सिमरत किस चाख ना जोह, हर सिमरत दायत जो ना पोह, हर सिमरत मोह मान ना बधे, हर सिमरत गर्भ जो ना रुद्धे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बो माए अकेला, जात जात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिगे साध संग।

पार ब्रह्म का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सदगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

ब्राह्मण जान तिन नाम पाया जिस पयो किरपाल साध संगत मैं लखे गोपाल आमन जान रखे सुख पाया।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंतप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना। अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब ही स्या

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर थान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी जो ना

भगत जना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखाबंद जल सेती काज, जैसी

रेठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिर तार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तुहे राखे पीत पीतांबर तिरपावन तनी थंब माए हर पाखे हरण आगस जिन नखे बिधार्यो।

गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा घर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजायला गरड़ चढ़े गोविंद आयला आपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेव रंगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे,

जग जीवन स्यों आप चित लाए, मन तन हरिया सहज सुपाए, नानक नाम रहे लिवलाए। बसंत महला तीजा भगत वछर

जे हर जीओ पावे सदा सुख शरीर पाणे चित लावे अपना प्रसेवे सहज सुपाए नानक नाम से मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुर पाए सफलो बिरख हर।

इलावा होए, जिन सच सेविया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम सुमाया, बसंत महला तीजा, भगत करे जन

आओ, एको सेव हो अवर न कोए, जित सेवे सदा सुख होए, ना ओ मरे न आवे जाए, तिस बिन अवर सेवी क्यों माए, थे जन साचे जिनी साच पछाणिया, आप मार सहजे नाम समाणिया, गुरमुख नाम प्राप्त होए, मन निर्मल निर्मल सस होए, जिन ज्ञान किया।

गुर सब्दी हर चेत सुभाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल में राम नाम वडियाई, गुर पूरे ते पाया जाई, नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे होमे जल जाई, वडभागी

सदगुर पेटे मत बुध होए, हर जू आपे लेहो मिलाए, गुर के शब्द सच नाम समाए, रहाओ मन बसंत हरे सब लोए, फले फुलगे राम नाम सुख होए, सदा बसंत गुर शब्द विचारे, राम नाम राखे उर थारे, मन बसंत तन मन हरिया होए, नान इव तन बिरख राम नाम फल पाए सोए, बसंत महला तीजा तेन बसंत जो हर गुण गाए, पूरे भाग हर भगत कराए, इस मन को बसंत की लगे ना सोए, इो मन जलिया दूजे दोए, अरहाओ इो मन तंदे बंदा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिरलाए, इो मन छूटे जा सदगुर पेटे, जम काल की फिर आवे ना फिट, इव मन छूटा गुर लिया छड़ाए, नानक माया मोह शब्द जलाए, बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चित लाए, इन बिद इव मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती, गोरमुख होमे कड्डे धोए रहाओ, सदगुर बाणी शब्द सुनाए, इव जग हरिया सदगुर पाए, फल फूल लागे

प्रसाद जो पसरी सूरज किरण जोत त्यों कड़ कर मैया ओत पोत एक कुहार व्या सर्वथाए गुर शब्दी मिल गए मेरी माए राव कड़ कड़ अंतर एक

मन घर सिमरो अंत सदा रख ले, हर घर चेत सदा मन मेरे, सब आलस दुख पंज प्रपाया, गुरमुख गावो गुण प्रकेरे रखाओ, मानव फिर होमे मोए, काल दै संघारे जमपुर गए, गुरमुख हर घर हर लिव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे,

कमल परया मिर संगत कर प्रभंशे रहाओ तुमरा जन जात अब जाता हर जप्यो पतत पविशे हर कियो सागल पवन ते ऊपर हर शोभा हर प्रभ दिनशे जात अजात कोई प्रभ चावे ता पूरे मानस तिनशे से तन वड्डे वड पूरे हर जन जेन हर तारो हर उर्चे हम ढींडे ढीम बहुत अद भारी हर तार कृपा प्रभ मिलशे जन नानक गुर पाया घर तूठे हम किए पतत पविशे बसंत हिंडोर महला चौथा मेरा एकिन मनुमा रह न सके नित हर घर नाम रस गीदे जो बारक रसक परे थन माता थन काढ़े बिलल बलीदे गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर बीदे वड़े भाग गुर सतगुर पाया वे काया नगर घर सीधे रघाओ जन के सास सास है जेते हर बेरे प्रभु हर बीदे ज्यों जल कमल प्रीत अद भारी बे जल देखे सुपली दे जन जप्यो नाम निरंजन नर हर उपदेश गुरु हर प्रीदे जन्म जन्म की होमे मल निकसी हर अमृत हर जल नीदे हमरे कर्म न बिचरो ठाकुर तुम पैज रखो अपनी दे हर पावे सुन बिनो बेनती जन नानक शरण पवी दे बसंत हिंडोल महला चौथा मन खिन खिन परम परम बोतावे तिल करनी वासा पाईए गुर अंग शब्द दारू सिर तारियो कर मंदर आन वसाइए गोविंद जीओ सर संगत मेल घर त्याईए हौ में रोग गया सुख पाया हर सहज समाध लगाइए गाओ कार रतन लाल बो मानक लादे मन भ्रमया लय ना सकाइए ज्यो ओडा कूप गुज खिन काढ़े त्यो सतगुर वत्स लहाइए जिन ऐसा सतगुर साधन पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइए जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाएगे मधुसूदन

या की गत मित कही ना जाए, काट काट रया समाए, या के भगत आनंदमय, या के भगत को नाही खै, या के

साधु संगत गुरे बताई ऊहां जपिए केवल नाम। साधु संगत पार ग्राम सगल तत् में तत् ज्ञान। सर्व ध्यान में एक ध्यान हर कीर्तन में उत्तम तुना। नानक गुरमिल गाए गुना बसंत महला पंजवा। जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल गए सोए। जिस

दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभु दयाल अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझे देहो दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद कड़ कड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग मन पाप करत तू सदा संग।

तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग तरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा। तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना। कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल ना बूझे आपना सूझे

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला पहला मन पुल्लो परमस आए जाए अतलुब्ध लुबानो बिखमाए न अस्थिर दिसे एक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन पुल्लो समझस साच नाए गुर शब्द विचारे सहज पाए रहाओ मन पुल्लो परमस पावरतार बिल बिरथे चाहे बहु विकार मैगल जो फासस कामहार कड़बंधन बाध्यो।

एक नराल अकथ कहानी एको शब्द सच्चा निशान पूरे गुरते जाने जान एको धर्म दृढ़ सच कोई गुरमत पूरा जुग जुग सोई अनहद राता एक लिवतार ओ गुरमुख पावे अलख अपार।